गुरु उपदेश दृढ़ करवाउंदा है। गुरु दी कृपा की है, जदों मनुआ कहने विच हो जावे, मनुआ गुरु दे अनुसार गुरमत लै करके चलन लग जावे, फिर पंजा प्यारियां दे कोल जाके बेनती करदा है, खंडे बाटे दी पौल बख्शिश करो, फिर सिख पंचन मैं मेरो बस, फिर पंज सिख पातशाह दी ताबिया हो करके पंज बारी गुरमंत्र, पंज बारी मूल मंत्र सारी मर्यादा दृढ़ करवा देंदे ने। पातशाह जी आखदे जिस दे उपर सच्चे सतगुरु जी कृपालु दयालु हो जांदे ने, ओनू फिर ऐसा उपदेश दृढ़ करवाउंदे ने जेड़ा लोक अते परलोक

0: पातशाह जी आप जी सर्ब कला समर्थ हो सारिया गुरु नानक पातशाह दे अंदर जो शक्तियां सन जेडे शुभ गुण सन ओ आप जी अंदर भी शोभा पाउंदे ने।
1: हम संसारी पति कुटुंब
0: असी महाराज संसारी हां संसार दे कम्मा कारा विहारा विच गुलतान होए हां।
1: कबहु नाले हर नाम अलंब
0: महाराज असी कदे भी उस वाहे गुरु दा

0: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना कहरनी गिण गिण बदले पऊगा देना बैरनी
1: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना कहरनी गिण गिण बदले पऊगा देना बैरनी
0: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना कहरनी गिण गिण बदले पऊगा देना बैरनी
1: जिन्ना जित करे तू कमाले ओना कहरनी गिण गिण बदले पऊगा देना बैरनी
0: ला के समाधि मार चौंकड़े हुण ना तवी दे उत्ते बैण गए सिखां दी ए वैर ने हकूमते एक दिन लेखे दिन पैणगे सिखां दी ए

0: गुरु प्यारी साहिब जी दी हाजिर ना प्रवान कर अति सत्कार जो बहुत ही रवान कीर्तनी पाई हरजोत सिंह जी जखमी साहब ओ हुण आप जी नूं कीर्तन राही निहाल करने जी। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

संसार उसे ही शब्द दे रहा ही वापस भी जाएगा। उत्पत परले शब्दे हुए, ये उत्पत्ति उस तो ही है तो परले भी उस तो। जिस दरवाजे दे रहा ही तुसी गुरुद्वारा साहब के अंदर आए हो, इसी दरवाजे राही बाहर जाओगे और कि शब्द तो संसार आया है, शब्द दे रहा ही वापसी होएगी संसार दी, आज नहीं कल, सौ साल बाद, हजारां साल बाद, करोड़ां अरबां साल बाद पत्थर भी एक दिन जानगे, परम नूर बनेंगे, मिट्टी बनेंगे, वनस्पति बनेंगे, पशु पक्षी बनेंगे, फिर मनुख बनेंगे, फिर किधरे जाके साधना तपस्या करके फिर परमात्मा दिख परमात्मा होंगे। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। जिस शब्द दे राही संसार आया है उसे दे राही वापस करना। उस शब्द की रूपरेखा भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक, भगत कबीर सारे संत जन दसते ने, ओंकार ओंकार एक धुन उपजे एको राग अलापे। गुरु अर्जन देव जी महाराज, ओंकार आद में जाना लिखे अर मेटे ताए न माना, भगत कबीर ओंकार आद कथने अनाद, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। खैर मुक्तसर में अर्ज करा, गुरु नानक ने तो एका टक ला दिता, एक यही शब्द है ओंकार जिस तो जगत आया, जिस तो संसार आया, एक ओंकार दूजा नहीं। बाणी भी पूरी रच दी, उस बाणी का नाम भी है ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पर, ओंकार किया जनचित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निर्मय। मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्दों के राही, परमात्मा प्रगट होया है अपने शब्द दे रहा है। असी जो बोला राही प्रगट होंदे इनू आहत शब्द कहते हैं। आहत चोट तो जिहड़ी आवाज पैदा होवे, दो वस्तुआं दी चोट तो, पवन मास नाभि नाल टकरांदी है आवाज बनती है, धुन बनती है, अखर बन के जबान बार प्रगट कर देती है। दो चीजां दे टकराव तो जिहड़ी आवाज बनी, साडे कन जो कोई सुनदे ने आहत शब्द है, आहत कहंदे ने चोट नूं। परमात्मा दा शब्द किसे चोट तो नहीं पैदा होया, उस तो स्वयं पैदा होया, इस वास्ते उस नूं अनाहत कहंदे ने। और वो शब्द व्यापक है, तेह लोकां में शब्द रव्या है, आप गया मन मानिया। उस शब्द दे ओ शब्द संगीतमयी है, रागमयी है। संगीत नूं गा के प्रगट किया संगीतकारा ने वक् वक् साजा दे रहा है। और ये साज सारे दे सारे पंज श्रेणियों विच आ जाते हैं, पंज तरह के तत्, वित, घन, नाद, सुगर। तत् तंती वित चरम का, घन का सी का जान, नाद शब्द घट को कहें सुगर स्वास पहचान। तंती साज सितार है, दिलरुबा है, बीना है, उंगलियां दे टकराव तो, लोहे दे टुकड़े दे टकराव तो धुन पैदा होती है। वित चमर चमड़े दे मड़े हुए सास, फिर छेने धातुआं नाल धातुआं टकरान, पित्तल नाल पित्तल, सोने नाल सोना, चांदी नाल चांदी, धातुआं दे टकराव तो जिहड़ी आवाज पैदा होती है। घड़े दे उत्ते थाप मारीए जिहड़ी आवाज पैदा होती है उहनूं नाद शब्द कहिंदे ने। शहनाई है, मुरली है, हारमोनियम है या मनुख है, कि पवन दे टकराव तो आवाज पैदा होती है, सुगुर शब्द करके कहते हैं। तत् तंती वित चरम का, घन का सी का जान, नाद शब्द सब घटको कहे सुगुर स्वास पहचान। ये पंज तरह के शब्द है, वह जड़ा ओंकार की धुन प्रगट हुई, उस इना सारे साजा की आवाज से संगीतमयी रागमयी। वाजे नाद अनेक असंखा केते वामन हारे, केते राग परिसं कहियन, केते गावन हारे दूर क्यों जाओ। भारत विच संगीत दे जन्मदाते अवतार ने संत जन ने, भारत विच साजा दे जन्मदाते भी संत जन ने, अवतारी पुरुष ने। हर अवतारी पुरुष नाल कोई ना कोई साज जुड़े होया है, और कोई ना कोई संगीत की खास धारा भी जुड़ी हो। खैर मैं लमकावां ना, परमात्मा प्रगट है अपने शब्द दे राही, जिस तरह मनुख प्रगट होंदा है अपने शब्द दे राही, अपने बोलना दे राही। बोल दस देंदे ने बंदा शांतमयी है, बोल

जरूर करांगा कि कथा विचार दे विच तीन गल्लां चेते रखनियां चाहीदियां। सब तो पहला है, मैं अक्सर कहने इत्थे पहली बारी अर्ज करांगा, पहला है सिद्धांत, दूजा है संवाद ते तीसरा शब्द है साखी। कथा विच ये तीन काम बहुत जरूरी ने जी। ये तीन बचन, सिद्धांत दा लफ्जी अर्थ हुंदा जी, असी आम तौर ते शब्द वरतने आ, ये साडा गुरमत दा सिद्धांत नहीं, ये साडा सिद्धांत नहीं। इत्थों तक के लोकां ने अपनियां जथेबंदियां दे सिद्धांत बनाए ने, अपने मुल्कां दे सिद्धांत बनाए ने कानून दे। उंज वैसे सिद्धांत दा लफ्जी अर्थ हुंदा है अंत सिद्ध कीती हुई बात। सिद्धांत मतलब कि जेड़ी गल अंत सिद्ध कर दिती, इयों कह लो जिस गल दा निचोड़ कढ के रख दिता भी तत आ जे। जिवें क्योंकि कई बार जदों असीं साखी करने आ, कईयां दे मन च जरूर ख्याल उठदे होणगे जी हुण इतिहास शुरू हो गया, क्योंकि तीन गल्लां जरूरी ने। सानू कोई गुरु ग्रंथ साहिब जी बारे पुछे ते जे कोई ए पुछे भी सानू सिक्खी दा सिद्धांत की है, ते आपां ए तीन गल्लां करने हुंने आ कि साडा सिद्धांत है किरत करो, नाम जपो ते वंड के छको। इहदा मतलब गुरु नानक साहिब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक इस सिद्धांत निचोड़ कढ के रख दिता तीन गल्लां च कि धर्म की किरत करो, परमेश्वर दे नाम नू जपो, किरत वचो भी वंड के छको, ते जेड़ी परमात्मा की कीरती आपां करने आ उस बाणी नू भी अगे वंडो। यह होगा साडा सिद्धांत। मान लो कई बार कोई शब्द पुछदा सी, शब्द वरतने कोर कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नदेड़ दी धरती ते चोला त्यागन तो पहला जदो गुरु ग्रंथ साहिब जी नू गुरियाई दित्ती ते की सिद्धांत दिता, फिर असी तीन गल्लां करने आ जी। महाराज जी ने कहा पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। उस सारियां बातां दा निचोड़ कर दिता। मेरी अर्ज है सिद्धांत दा अर्थ है अंत सिद्ध कीती हुई गल जो तत् है। हुण सिद्धांत नूं समझण वास्ते एक शब्द है संवाद। संवाद आप जी समझदे होगे जी, बड़ा सौखा शब्द है संवाद। संवाद दा मतलब जे आपां डायलॉग शब्द कहने, गलबात करनी। गुरमुखो याद रखियो, सिद्धांत नूं समझण वाले संवाद करदे आ, ते संवाद जिन्हें करना ओनू सिद्धांत दी समझ होनी चाहीदी। साडी तरास दी ए वे कि डायलॉग ओ करन आ जांदे आ जिन्हां नूं सिद्धांत दे बारे कुछ भी पता नहीं। जे सिद्धांत दा पता है ते तां संवाद कीता जा सकदा, क्योंकि संवाद करन वास्ते समझ चाहीदी, अकल चाहीदी, ओदी जानकारी होनी चाहीदी। ते मैं अक्सर बेनती करना हुन्ना कि गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च महाराज जी ने काजियां नू, मुलाणियां नू, जैनी सरेवड़ियां नू, राजियां नू, डाकुआं नू, चोरां नू, पापियां नू, खिमा करो मैं शब्द वरते है कि जिन्हां ने सारी जिंदगी पाप कीते, सतगुरां ने सब नू उपदेश दिता, पर गुरु ग्रंथ साहिब च सब तो ज्यादा जे किसे ने गुरदेव नाल संवाद कीता ते उह सिद्धां ने कीता, क्योंकि सिद्ध समझ वाले सन। मैं उस दिन सैन होजे भी कहा, आप शब्द वर देने असी भी कहने कन्न पाटे, क्योंकि कन्ना मुंदरा पाते सन, ये मंग के खाण वाले। पर एक मैं बेनती करांगा, ये ओ रोजी दी खातर घर छड़ के नहीं सन तुरे। गोपी चंद राजा सी जी, भरथरी राजा सी जी, ये राजियां दे पुत्र सन, ये किसे अंदर दे सुख वास्ते सब किज नूं लत मार के तुरे सन, ते उन्हां कोल शब्द दी समझ सी, उन्हां कोल सुरत दी समझ सी, उह सचमुच समाधि स्थित हुंदे सन। पर इह गल वक्री के जिस मुकाम ते धन गुरु नानक साहिब जी ने, उत्थों तक उन्हां दी पहुंच नहीं सी। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब सब तो लंबेरी जिहड़ी बाणी है

बड़ी हिम्मत से बड़ी जुरत दिखा रहे थे। नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनो, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब दा अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिस दे घर दे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर दी तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है। इन्हां दा इलाकियां नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे च वगदा है। फिर इन्हां दे नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुल्क ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है। भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है। उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाम एको हो जाता है कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात, ना नील ना थेम। जब भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, ना वह हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धी है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक नदी ते है, सागर नहीं है, नहीं है, समुंदर नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तारकिक आते हैं, कट्टर बड़े आते हैं, और कमाल की गल, अकल तो बिना अकल का दावा, अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने का दावा धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है। फिर पता की है, किसी एक कद नूं अकल आ जाए तो इस तरह की गल कवे, फिर कटो उसके बंदबंद, बिठाओ उसनूं तत्ती तवी, कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे, ईसा सोली ते लटकदा पिया। मुहम्मद साहब दे बदर की लड़ाई दे अगले दो दन तोड़ दिते गए। सुकरात नू जहर दा प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए, एक नू तुसी सूली ते टंगे, एक नू जहर दे के मार रहे, एक दे दन तुसी तोड़ दिते, एक नू तत्ती तवी ते बिठाया, एक नू चांदनी चौंक दे गर्दन कट दिती है। फिर उन्हां दे फरजंद, उन्हां दे बच्चियां नू, पोतरियां नू तुसी दीवार दे चिणदे पए, किसे दे बंद बंद कट रहे हो, किसे नू उल दी देग दे च बिठा रहे हो। पहले दसो इन्हां ने चोरी कीती है, यारी कीती है, बलात्कार कीता, किधरे कतल कीता है, एक भी जुर्म नहीं। इन्हां दा एक कसूर है कि ए बेकसूर है, कसूर वारां दे कठ दे च बेकसूर होना भी कसूर है, गुनाहगारां दे कठ दे च बेगुनाह होना भी गुनाह है, मूर्खां दे कठ दे च इतना स्याणा हो जाना भी किसे वद हले ते मूर्खता हो जाती है। देखो सारा बनारस कह रहे है कबीर पागल है, लोग कहें कबीर बौराना, ये ते बौरा है, पागल है। हुण बनारस वासियां नूं कौन दसे सारे बनारस दे च इक्को ही ते स्याणा है, बाकी दे सब पागलां दी भीड़ है। हुण इक स्याणा होवे ते भीड़ पागलां दी होवे ते दुनिया ते बहु गिणती, प्रभाव प्रभाव ते बहु गिणती दा, घट गिणती दा ते है। इस वास्ते डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने
1934 ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरू, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

लिख लिख पढ़िया तिता कड़िया बहु तित भविया तितो लव्या बहु भीक किया देही दुख दिया सौ विजी अपना किया अन्न न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एनस कहरे मुन गुता क्यों जागे गुरबिन सूता भाग्य पताना अपना किया कमाना अल मल खाई सिर शाही पाई मूर्खंदे पत गवाई दिन नावक स्थाय न पाई रहे बेबाणी मणि मसानी अंदर जन फिर पिछतानी सतगुर भेटे सो सुपाए हर का नाम मन मसाए नानक नदर कर सो पाए आ संदेश ते नह केवल हमें शब्द जलाए पौड़ी।

ये शब्दों सूदर शब्दों योग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय शब्द सूर शब्द सूदर शब्द प्राकृत है सर्व शब्द एक शब्द जे को

कर ब्राह्मण पूरे नाद ओना पे आवे ओई साध कुड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोर करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक उड़ रहा भरपूर मत्थे टिका तिर तो तीका खाई हाथ छुरी जगत का सा

गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, कन्ना तो भी बहरा हो गया हूं मैं व्यर्थ सुनदा भी नहीं, फिजूल दे बोल मैं सुनदा ही नहीं, मैं गलत गल कन दे अंदर जाने ही नहीं देंदा। देखो कोई साढ़े घर दे कचरा सुट जाए गंदगी सुट जाए असी कहांगे असभ्य मनुख उहदे नाल लड़ भी सकते हैं, पर जो कन्ना दे राही गंदियां गल्लां साढ़े सुट जाए असी बड़े शौक नाल सुनी है नहीं, फिर यह सावधानी नहीं है। कबीर कहते मैं सावधान हो गया मैं व्यर्थ दियां गल्लां सुनदा भी नहीं, गल खत्म। पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुरवान, इनू स्वामी रामानंद ने बसंत राग दे शब्द विच बड़े सोहने ढंग नाल बयान किया, ध्यान नाल सुनना। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो पंग। मेरा मन पिंगला हो गया, पैर टूट गए ने, एदी भटकना मिट गई है। मेरा चित ना चलत, नहीं चल रहा, पता है चंचल दे अर्थ की ने, चल चल चल चल हर वक्त ही चलता है, तन बैठा है ता भी मन चलता ही रहता है, चंचल है, चल चल चलता चलता चलता रुकता ही नहीं, कदे टिकता ही नहीं। स्वामी रामानंदा बसंत राग का शब्द कहते ने मन मेरा पिंगला हो गया, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित ना चलत मन भयो भंग। एक दिवस मन भई उमंग, गस चंदन चोहा बहुत सुगंध, पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरु मन ही माए। टिके होया मन सब कुछ समझ लेंदा है, भटकना जद मिट जाए। दो गल्लां धार्मिक जगत दे बिल्कुल गलत कहियां जांदियां ने, भई मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, गलत। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे, पहले कित्थों शुद्ध कर लोगे, किवें कर लोगे। फिर दूजी गल करदे ने मन नूं एकागर करके बाणी पढ़ो, यकीन जानो इन्हां नूं मन दी समझ नहीं। इंज कहना चाहिए बाणी जपो ताकि मन एकागर हो, पहले कित्थों एकागर हो जाएगा। ये मन नूं एकागर करके बाणी पढ़ो बिल्कुल गलत, इन्हां लोगों नूं मन दी समझ ही नहीं है। बाणी जपो ताकि मन एकागर होवे, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, हद हो गई। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे, पहले किवें शुद्ध हो जाएगा, बिना सत्संग तो किवें जो है शुद्ध हो जाएगा। बिन भागा सत्संग न लब्भे, बिन संगत मैल भरी जे जी, इत मैला हो जाएगा उल्टा। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, कबीर कहते ने पांव ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण, ऐसा बाणी दा बाण लगे है पैरां तो पिंगला हो गया, भटकना मिट गई। इनू एक उर्दू दे माया नाज शायर ने इंज कह लो टीका ही कीता होगा, जरूर इन्हां भगतां दे ख्याल उसने सुने होने ने, या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, कहिंदा है जिहड़ा मेरा पैर टूट गया है ना, इस टूटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मन रहा जो मेरा पैर टूट गया। हद हो गई, पैर टूट गया ते टूटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता, हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करम मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भई है लाल, गुलाल रंगारे कहो नानक संतन रस आइए ज्यो चाक गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है।

0: पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है।
1: So the Musiala baby, yeah. Mercy.

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।

0: टेम्परेरी चार पुल नवे बनाने पे गवर्नमेंट ने, क्योंकि भीड़ जो इतनी, मंदिर का जान का रस्ता होर बनाया गया, आन का रस्ता होर बनाया गया। इन्नी भीड़ ने जो दर्शन करने, 4 करोड़ ने एक महीने आना है, लखां की गिनती रोज पहुंचती है। उस मंदिर तो कोई 100 गज की दूरी से गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा ओंकार, जिथे धन गुरु नानक देव जी महाराज ने वो बाणी उच्चारण की, जिस बाणी का नाम है दक्कनी ओंकार, रामकली दक्कनी ओंकार। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जन चित, ओंकार सैल जुग वाय, ओंकार वेद निर्वाय। महाराज कहने सारा पसारा ओंकार तो है, मता कोई कहे होर शब्द है होर शब्द है, तो सतगुरु ने एक लाया नहीं है, एक ओंकार, एक ही शब्द है, दूजा नहीं है। इस वास्ते भी भारत देश से ये दो शब्दों की गल है, ओंकार ते ओम। इस्लाम दे बाने मोहम्मद साहब कहते ना वो शब्द है कुन, तो मुसलमाना दे कुन मनते ने, ईसाई जगत दे मनते ने वो शब्द लोगोस है। गर्स के जिस जिस ढंग नाल पकड़ दे चाहिए, वो अनाहद नाद है जो सुनाई देता है गुरु नानक नो कहते ना ओंकार, सुनाई देता है महावीर नो कहते ना ओंकार है, सुनाई देता है भगत कबीर नो कहते ना ओंकार है, और सुनाई देता है धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज नो कहते ना ओंकार है। उन्हां दे बोल ओंकार आद कथनी अनाद, जाप साहब ओंकार अनादि कथनी है, पहला बोल है ओंकार, ब्रह्मंड की पहली आवाज है, पहला शब्द है। इस शब्द इसे तो ही संसार का आवना होया, कीता पसाओ एको कवा, एक कवाओ होया ओंकार, उस तो ही संसार का पसारा होया। किस तरह होया, किसते होए लख दरिया, उसे कवाओ तो जिंदगी दे लखां दरिया पैदा हो गए, बहु अनंत सूरज पैदा हो गए, जो लखे नहीं जा सकते, गिने नहीं जा सकते। एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े बने, कई कोट ससियर सूर निखत्र कई करोड़ा, एक एक सूरज दे फिर कई कई टुकड़े आए। ये जमीन उसे सूरज का एक टुकड़ा, धुंध पानी बन गई, और वो टुकड़ा जो वास्तविक अग का गोला से, अग का गोला ही से, सहजे सहजे ठंडा होने लग पाया, धुंध पानी बनी। इस अग दे गोले नो चारों पासे पानी ने घेरिया, सहजे सहजे ये अग का गोला ठंडा होना शुरू होया। ये जिस रूप दे प्रगट होया, इनू कहिंदे ने पाहन, पाहन पानी तो प्रगट होया। साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, पवन शब्द, साचे ते पवना भया पवने ते जल होए, जलते त्रिभुवन साजिया घटगढ़ ज्योत समोए। पंज तत्तां दी पुतला है साडा, हर तत् दी अपनी अपनी प्रकृति है। ये जिहड़ा बोलना है ना, ये पवन करके, देही माटी बोले पवन, हुण किवें बोलदा है लंबा चौड़ा प्रकरण, मैं इस पासे ना जावां क्योंकि समा अपनी चाल नाल चलदा पे। इस वास्ते सतगुरु ने पवन नूं गुरु कह दिता है ना, पंज तत्तां दे चों पवन नूं गुरु कह दिता है, पवन गुरु, क्यों बोलना पवन करके, संबंध जुड़दे ने बोल चाल नाल, संबंध टुटदे ने बोल चाल नाल। टुट गई प्रीत बुर बोल, दो बोल बोले मित्रता दुश्मनी च बदल गए। गंड परीति मिठे बोल, दो मिठे बोल बोले ओपरा बंदा अपना हो गया, मित्र बन गए। संबंध जुड़दे ने बोल चाल नाल। एक सियाणा मेहमान एक कोई दिन दे अंदाजा ला लैंदा है ਦੋ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਰਖਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿੱਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਸ, ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਨਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬੋਲਦੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪਏਗਾ, ਦਿਖਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਕੜਦੇ ਚਾਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਏਗੀ, ਦਿਖਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜੈਸੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੰਮਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਗ ਜਾਗਿਆ, ਨੌ ਭਾਗ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਜਪਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ, ਸੋਇਆ ਮਨ ਜਾਗਾਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਪੂਰਾ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ। ਜੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਸੰਤ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੁਣ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਜੋ ਪੇਖੇ ਆਖੀ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਨਾ ਉੱਚਾ ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ, ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਭਰੋਸਾ? ਇਹਦਾ ਪਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰੂਫ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ, ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਝਲਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਟਪਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ टपक रहा है। अंदर विकार होवन अखां दे चों विकार टपकदे ने, पर अंदर निरंकार होवे यकीन जानो अखां दे चों निरंकार दी झलक टपकदी है। नैन रहे रंग लाए, आंखें जुबान नहीं लेकिन बेजुबान नहीं। उस्ताद जौक कहंदन ठीक है, अखां कोल जबान नहीं लेकिन इन्हां नूं किधरे बेजुबान ना समझ लेना। बहुत कुछ कह जांदियां ने, बहुत कुछ कह जांदियां। रस्ते च एक बंदा मिलदा है, वह कहिंदा है मित्रा तैनू मिल के बड़ी खुशी हुई, अखां दसदियां पईआं ने कमबख्त कित्थों मिल गया, जरूरी काम ते जा रहे सी, हुण वक्त जाया करेगा। अखां कुछ होर कह रही, अखां झूठ भी नहीं बोल सकदियां, जबान झूठ बोलदी है, अखां गलत बयानी भी नहीं कर सकदियां। तो मैं अर्ज करां जिवें हाथ खो भी सकदे ने, हाथ दे भी सकदे ने, अखां बहुत कुछ दे जांदियां ने, अखां बहुत कुछ खोंदियां ने, ये भी मैं अर्ज करां, बहुत कुछ खो लैंदियां। किसी दे धन नूं ते किसी दे रूप नूं लोभ वस होके देखना, अखां नूं संस्कृत विच कहिंदे ने लोचन, ते तकड़ी नूं कहिंदे ने लोचा। ए दोवें शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच आए ने, लोचन लोचा। ए लोचा किसे दे रूप ते टिक जाए हटे ही ना, ए दृष्टि हटे ही ना, फिर उसे नूं कहिंदे ने गुस्ताखी माफ लोचा। लोचन लोचा लोचा गाल है, इते लोचा इति अखां नाल अगले दी असमत लुटदा पे, इति अखां दे नाल अगले दी इज्जत पे लुटदा, इति लुच्चा गाल है। लेकिन लुच्चा दा मतलब इतना ही है, लोभ वस होके वासना वस होके किसे दे रूप नूं वेखना या किसे दे धन नूं वेखना। गुस्ताखी माफ मैनूं कहण देना, कईआं दे हथ चोर नहीं आउंदे, नजरां चोर आउंदियां। कईआं दे हाथ ते नहीं खोंदे, क्यों? डर है कानून दा, समाज दा, हथकड़ियां ने, जेलां ने, हथां नूं हथकड़ियां पै सकदियां ने, नजरां नूं कौन हथकड़ियां पाएगा, किसने पाणी? कानून पा सकदा, समाज पा सकदा। यकीन जानो हथ मनुख दे बिल्कुल साफ सुथरे ने, इतने मैले नहीं। अजोके संसार विच मनुख दियां जितनियां नजरां मैलियां ने, इतने हाथ ते कपड़े मैले नहीं ने, नजरां बहुत मैलियां, बहुत मैलियां। लोचन लोचा लुच्चा, इस संबंध उते मैं काफी कुछ लिखिया भी है नजरां दे उते। खैर मैं अर्ज करां, कबीर कहिंदे ने इह नजरां ही मेरे कोल प्रूफ ने, अखां ही मेरे कोल प्रूफ ने, मेरी अखां ने प्रभु नूं वेख्या, जो मैं वेख्या ते कह रहा। दोए दोए लोचन पेखा, हां हर बिन अवर न देखा। तो मैं अर्ज करा ये अनुभवी पुरुष ने, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे बोल, ये किसे कवि दे बोल नहीं ने, ये ब्रह्मवाक ने। की बोलिए परमात्मा नाल संबंध जुड़ जाए, वो बोल बोलो जो आए ही परमात्मा तो ने। परमात्मा नाल जोड़नगे परमात्मा दे बोल, अपने बोल नहीं जोड़ सकते। अपनिया कितनिया ही कवितावां हो जान, कुछ भी नहीं है। ये गुरबाणी जपोगे ते खेड बन जाएगी, जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाने। एक बड़ा भारी भुलेखा है भाई, वाहेगुरु वाहेगुरु जपना सिमरन है, बाणी पढ़नी नितनेम है, सिमरन नहीं। गुरमुख बाणी नाम है, नाम हृदय वसाई। कौन कहिंदा बाणी जपनी नाम जपना नहीं है? सिमरन का मतलब है याद करना। तो जे वाहेगुरु वाहेगुरु करता पे अंदर याद नहीं चलती पई, तो वाहेगुरु वाहेगुरु की प्या करता, कुछ भी नहीं, हमें हवा चुट जाएगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु का जपना अपने आप को जगाने वास्ते, परमात्मा को सुनाने वास्ते नहीं। जितना मन जागदा जाएगा बाणी दे जप नाल, वाहेगुरु दे जप नाल, उतना ही परमात्मा का पता चलता जाएगा, पता चलता जाएगा। हुण मैं अर्ज करा, अनंत काल पहले, अरबां खरबां साल पहले, धुंध से अंधकार से एक धमाका होया, आवाज होई, एक जवान होके स्वामी महावीर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु नानक देव जी भगत कबीर उपनिषदां दे 60 ऋषि कह रहे ने ओ आवाज से ओ अहंकार ओ अहंकार। एक एक दा खुलासा हुण मैं ना करा, एक गल वखरी है, बाकी कहिंदे ने ओम, क्योंकि भी मैं दोहरा दिया और मैं इसका खंडन भी नहीं करांगा क्योंकि उन्होंने ओम पकड़ दे चाया, उन्हां दी पकड़ दे चाया ओम, किसी दी पकड़ दे चाया ओ अहंकार। जैन धर्म भावें गिणती दी ते बहुत थोड़े ने, ये कहिंदे ने भारत दे 60 लाख तो ज्यादा नहीं ने, ये भी मैं अर्ज कर दें इतने ही ने। इन्हां दा पैगंबर, इन्हां दा अवतार महावीर है, वो कहिंदा जगत बनया ओहंकार दी धुन तो। कलगीधर पातशाह कहिंदे ने ओहंकार आद कथनी अनाद, कबीर भी कहिंदे ने ओहंकार आद मैं जाना लिखे रमेटे तां न माना। तो हुण मैं दोहरा दिया, मां बाप तो यह शरीर आया है, चूंकि शब्द तो संसार आया है, तो शरीर दे च मां बाप दी अंश मौजूद है, संसार दे च शब्द मौजूद है, और शब्द व्यापक है। घट घट वाजे नाद, घट घट दे च वज रहा है, सुनाई क्यों नहीं दे रहा? दरअसल मन बोलता है, मन चुप करे तो सुनाई देवे, जिस दिन मन चुप करेगा सुनाई देगा। धर्म दी सारी साधना मन नु चुप कराण वास्ते है। सनातन मत दे कुछ ऋषियां ने इस नु इंज अपनाया भी, चलो जिन्ने चिर तक मन नहीं चुप करता जबान नु पहले चुप कर दे, जबान नाल नहीं बोलते, शायद किसी दिन मन भी चुप कर जाए। इस नाल गुरु नानक सहमत नहीं होए। गुरु नानक कहिंदे ने चुप है चुप ना हो गई जे लाए रहा अवतार। जबान दे चुप करन नाल मन चुप नहीं करदा। एक बंदा चुप बैठा है, मन दी दुनिया च बड़ा रोला मचिया होया, बहुत शोर शराब, किधरे चुप ना समझ लेना किसे नू, मन बोलदा पिया है। रात नू सुपने दी दुनिया रच के भी बोलदा, चुप ते उक्की नहीं करदा, उक्की नहीं करदा। धर्म दी साधना मन चुप करे अनाहद नाद सुनाई देगा। उस अनाहद नाद दे च हजारां तरह दा राग है, हजारां तरह दे साजां दी आवाज है, वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे, केते राग परीसों कहीं केते गावण हारे। जब कोई उस अनाहद नाद नु सुन लेंदा है, वो संगीत नु भी जन्म दे सकदा है, कविता नु भी जन्म दे सकदा है, उहदी कविता अमृतमई बाणी होवेगी, परमात्मा दे बोल होणगे, उहदे अपने नहीं होणगे, क्योंकि अनाहद नाद तो आ रही है, उहदा अपना मन चुप कर गया। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हों आपों बोल न जाणदा, ओ कहा सब हुक्म आओ जियो, मेरा मन ते चुप कर गया, कुछ कहिंदा ही नहीं, फिर इतना तुसी आखे ते प्रभु बोलता है, जैसे मैं आवे कसम की बाणी। पहले दिन जब गुफा विच मुहम्मद साहब की समाधि लगी है, उन्होंने कंबड़ी छिड़ गई सी। घर आए, उन्हां दी बेगम हजरत खजीजा ने 3-4 कंबल पा देते हैं, लिटाया भी शायद ठंड लग गई है। बैठ गए, उन्हां दी जबान तो कुरान दियां आयतां निकलियां। शायद आपनो पता होवे मोहम्मद साहब बिल्कुल अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़, 2 साल दे सन, मां गुजर गई, 6 साल दे सन, प्यो गुजर गया, पाले है चाचे ने अबू तालब ने, यतीम अनपढ़ रह गए। दूसरा मैं ये अर्ज करा, खदीजा मुहम्मद साहब खदीजा दे मुलाजम सन, ओदा समान लेके दमशक दे च, बसरा दे च, बगदाद दे जाके बेच दे सन, करबला दे जाके बेच दे सन, पाई पाई दा हिसाब दे देंदे सन, ईमानदार बड़े सन, शरीफ बड़े सन। मालकिन ते ए नौकर दा रिश्ता फिर पति पत्नी दे च बदले। खदीजा 40 साल दी सी, मोहम्मद साहब 25 साल दे सन, ए रिश्ता होया है, निकाह होया है। खदीजा 40 साल दी सी, मोहम्मद साहब 25 साल दे सन। रोज गुफा दे च जाके रात नो अभ्यास करदे सन। अज उस गुफा तक जो कहिंदे ने 14 मील दा रस्ता सी, सऊदी गवर्नमेंट ने टनल बना दी है, हुण 3 किलोमीटर का रह गया। सारे उस टनल दे चो लंघ के जांदे। पिछले साल उस टनल दे भगदड़ भी मच गई सी, सैकड़े बंदे मर गए सन, क्योंकि लखां दा इकट्ठ उतो लंघदा है। उस गुफा तक सारे जांदे ने, उस गुफा नूं सजदा करदे ने। वे इत्थे पहली समाधि मुहम्मद साहब की लगी सी। जैसे वापस आए ने घर, कंबड़ी छिड़ी हुई, कंबल ते कंबल पाए खदीजा ने, फिर बैठ गए, पसीना भी आ रहा और कंबड़ी भी छिड़ रही है। फिर जबान चो तरन्नुम दे ये आयतां निकलियां कुरान दियां, दंग रह गई खदीजा। कहन लगी, हजरत ये बोल थोड़े नहीं ने, थोड़े नहीं, तुसीं ध्यान पढ़ो। क्योंकि वो जिहड़े बोल सन वो काफिया ते रदीफ बिल्कुल कावे शैली दे और तनन्नम दे दंग रह गए, ये बोल थोड़े नहीं ने। मुहम्मद साहब कहंदे ने, हां खदीजा तू ठीक पकड़े है। इस वास्ते इस्लामी जगत च कहंदे ने पहली मुसलमान खदीजा हुई है। सिख जगत दे प्रिंसिपल गंगा सिंह जी कहंदे सन, सिखी बेबे नानकी तो शुरू हुई है, सारियां दे भरोसे टुट गए सन, बेबे नानकी दा नहीं टुटिया, उत्थों शुरू हुई है। कुछ ते कहंदे ने अकीदत ते भागवत दा संदेश ये द्रौपदी तो शुरू होया, कुछ ते इत्थे तक कहंदे ने। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, ये मसला किसे वक्त फिर रखांगे तुहाडे सामने। पहली मुसलमान खदीजा नूं मंनदे ने, ये बोल फड़े नहीं ने। फिर मुहम्मद साहब कहंदे ने तू ठीक पकड़े है। मैं ते चुप कर गया, मुहम्मद ते चुप कर गया, पता नहीं खुदा की बोली जा रहा, मेरी समझ च भी नहीं, मेरी समझ च भी नहीं। मैं एक दिन रविंद्र नाथ टैगोर की जीवन कथा पढ़ रहा सी, उन्हां दा शांति निकेतन मैं देखने वास्ते गया सी आसनसोल तो। भावें उत्थे मैं ब्लैक बोर्ड से लिखा शब्द देखिया सी गुरु गोबिंद सिंह जी का, प्रभु तू प्रभु जू तो के इलाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन मनवारी। मैं उत्थे कह बैठा, मैं कह शब्द ते दसवें पातशाह दा है जिहड़ा ब्लैक बोर्ड ते लिखा है, इस तो तुसी की सिखांदे हो। कहिंदे इक कावे शैली नूं गुरु गोबिंद सिंह ने जन्म दिता है, इस शब्द दे राही असी ये विद्यार्थियों नूं सिखांदे हां। मैं कह इहदे च की है, मैनू दसो जरा, मैनू भी पकड़ च नहीं है मेरी, मैनू दसो। कहने कि गुरु नानक देव जी जिस अखर नूं पहले वरतदे ने उस सारी पंक्ति विच ओ अखर पहले ही रहिंदा है। जिवें पहली पंक्ति विच अस्थाई है, प्रभु जू तो कै इलाज हमारी, हुण नन्ने नूं लैंदे ने, नीलकंठ, नीलकंठ एक शब्द है, नीलकंठ नर हर नारायण, नील बसन बनवारी, एको शब्द नन्ना चलदा है। फिर पप्पा चलेगा, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी। फिर मम्मा चलेगा, माधव महाजोत, महाजोत एक ही शब्द है, माधव महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी। मैनू कहन लगे असी एक कावे शैली इस तो सीखते हैं। मैं कह धानो तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे शब्द नूं इस तरह पकड़िया ते है, साडी ते कख समझ च नहीं आया, साडे विच कई दसम ग्रंथ दी निंदा करन ते तुल पए ने, समझ कख नहीं आया, कुछ भी पता नहीं। कहिंदे ने उहदे त्रिया चरित्र है, एक मिनट जरा खामोशी नाल सुनना। त्रिया चरित्र विच काम दियां बारीकियां नूं, उतार चढ़ाव नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्णन कीता है। क्यों कीता है? ऋषि वात्स्यायन ने पूरा एक ग्रंथ लिखिया, उन्हें काम सूत्र कहते हैं। लिखिया उसने सारा ग्रंथ राम ते नहीं लिखिया, प्रभु दे नाम ते नहीं लिखिया, काम ते लिखिया। सारा हिंदू समाज उसने ऋषि कहता है, ऋषि वात्स्यायन लिखिया उसने काम ते है। ते उन्हें बड़ी प्रबल दलील दिती है, हंकार ते बोलिया जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। लोभ ते बोलिया भी जा सकता है, लिखिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। क्रोध ते लिखिया भी जा सकता है, बोलिया भी जा सकता है, अश्लील नहीं है। सिर्फ काम ते बोलना ते लिखना ये अश्लील हो गया, जिहड़ा सारी दुनिया नूं भ्रष्ट कर देंदा है। इस्त्री नूं इस्त्री नहीं रहण देंदा, गनका बना देंदा है, पुरुष नूं पुरुष नहीं रहण देंदा, बलात्कारी बना देंदा है। इस दे उत्ते बोलना ते लिखना अश्लील किस तरह होया? ऋषि वात्स्यायन दी इस दलील दे समय उस समय दा समाज चुप कर गया सी। और वो ऋषि जान के पूजे गए, वो ऋषि जान के सत्कार है गए। समाप्ति करम है साडे विच जना खड़ा खड़ा हो जाता है, नहीं जी है गुरु गोबिंद सिंह की रचना नहीं, रचना नहीं, रचना नहीं। मैं अर्ज करा गुरु गोबिंद सिंह की रचना तो चंगे चंगे सियाने प्रेरणा लेंदे पैने, कुछ सीखते पैने, कुछ सीखण की कोशिश करो उन्हां दी रचना तो। ठीक है पुराना इतिहास सतगुरां ने लिखे है, इस वास्ते गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं कीता, चौवी अवतारां दी कथा है। और सतगुर साफ लिखते पैने दसम कथा भागवत की, पाखा करी बनाए अवर बासना नाए प्रभ धरन जुद के चाहे। मैं ये सिर्फ टीका कीता है, मेरे अपने विचार नहीं है गुरु गोबिंद सिंह, मैं भाषा की थी। तो गल खत्म हो गई, इल्जाम ते गुरु गोबिंद सिंह ते उंज नहीं आऊंगा, पर कीता की जाए अकल नू ताले ला दो ते गुरु गोबिंद सिंह दी हर दिन नू खंडन करी जाए। धुआंदार बोली जाओ जिन्हां नू कख नहीं पता, सारी जिंदगी किसी होर पासे रोलदे ने, बुढ़ेपे जो है कौम नू भ्रष्ट करने वास्ते गलत बोलनिया बोलन शुरू कर देंदे ने ते लिखना शुरू कर देंदे ने, जिहदे नाल आम समाज गलत फहमी च पै जांदा। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, शांति निकेतन दे च उस शब्द तों कविता बनाउण दी शैली नवी शैली, कहिंदे जी इसनों जन्म गुरु गोबिंद सिंह ने दिता, असी सीखदे हां, असी सीखण दी जो है कोशिश पै करदे हां, असी जानण दी जो है कोशिश पै करदे हां। खैर लमकावा ना, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने शब्द ओंकार, जैसे ओंकार दी धुन होई अनंत सूरज प्रगट होए, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े और ओ धुंध पानी बन गई, सहजे सहजे ए अग दा गोला ठंडा होया, इदा जेड़ा जेड़ा भाग ठंडा होके प्रगट होया ओ पत्थर दे रूप दे प्रगट होया, आकार रूप दे पहला सी पत्थर। और सारी दुनिया च जितना पत्थर पूजिया जाता इतना परमात्मा नहीं पूजिया जाता, पता है क्यों? जैन पत्थर पूजते हैं, बौद्ध पत्थर पूजते हैं, सनातन पत्थर पूजता, ईसाई पत्थर पूजते हैं, भावें मुसलमान आखन असी पत्थर दे पुजारी नहीं। संघे अस्वत जो थे पिया खाना खुदा दे जद्दा दे, कहने इब्राहिम तो आया, सिद्धा जन्नत तो आया इब्राहिम नो प्राप्त होया, सिद्धा खुदा तो आया ये पत्थर। हुण इन्हां कोल कोई पुछे खुदा तो बिना भी किसी होर पासे भी कोई चीज आउंदी है, सब कुछ खुदा तो आया, पत्थर भी खुदा तो आया। जद ईसाई कहिंदे ने ये हजरत ईसा खुदा दा इकलौता बेटा है, तो बाकी शैतान दी औलाद ने जो खुदा दा बेटा है, उन्हां नू इंज कहना चाहिदा है हजरत ईसा खुदा दा लायक बेटा है, शरीफ बेटा है, नेक बेटा है, कोई हर्ज नहीं इस नू मनण दे। नेक पुत्र है, चंगा पुत्र है, नहीं जी एक लौता पुत्र है, बाकी कितों आए ने? फिर सारे उसे तो आए ने, सब उसे तो आए ने। कहण दा ढंग ईसाइयां नू जो है नहीं आया, गुस्ताखी जो है माफ। जितना पत्थर पूजिया जा रहा है क्यों? आकार रूप दे परमात्मा जब प्रगट होया संसार दे पहले पत्थर दे रूप, हुण पत्थर ते परमात्मा दा सुभाव इक्को ही है। परमात्मा नू भुख प्यास नहीं लगती, पत्थर नू भी नहीं लगती। परमात्मा नू दुख सुख नहीं व्यापदा, पत्थर नू भी नहीं व्यापदा। परमात्मा नू हजारां गालां कड्डो क्रोधी नहीं आउंदा, ते सारा दिन सजदा करी जाओ उपमा करो करी जाओ कोई फुल नहीं जांदा। जे सब मिलके आखण पाए वड़ा न होवे घाट न जाए, सारा दिन पत्थर देगो मत्था रगड़ो वो कोई फुल नहीं जांदा, ते सारा दिन उस गालां कड्डो वो कोई ढेरी ढा नहीं बैठदा। पत्थर दा स्वभाव परमात्मा वास्ते परमात्मा वर्गा है, फर्क सिर्फ इतना है पत्थर टोटली सुत्ता होया है, परमात्मा पूरा जागया है, पूर्ण तौर ते चेतन है। हुण पत्थर जिस दिन पूरा जाग जाएगा ये परमात्मा हो जाएगा। सहजे सहजे प्रकृति, प्रकृति दे भी अर्थ किधरे नेचर न समझ लेना, कुदरत आम कुदरत करते ने। संस्कृत दा शब्द है प्रकृत, प्रकृति कृत तो पहले परमात्मा, इथे प्रकृति दे अर्थ परमात्मा बनता है, नेचर नहीं बनता, कुदरत नहीं बनता। कुदरत ते कृत है, कादर दी कृत है, पर प्राकृत कृत तो पहले, उते परमात्मा है, उते करता है।
1: पर किरति
0: उसका नियम सहजे सहजे पत्थर नो मिट्टी बना जिस शकल दे प्रगट कीता बनस्पति ए दूजा पड़ाव से पत्थर ही बनस्पति बने। बनस्पति नु थोड़ी जिया प्यास लगती है पानी चाहिए क्यों जागी है पत्थर ते टोटली सुता होया सी जागे उदियां लोड़ां आउंदियां ने सुते उदियां लोड़ां नहीं आउंदियां। बनस्पति दी लोड़ पानी चाहिए प्यास पैदा हो गई है। हजारा लखा साल दी लंबी यात्रा तो बाद बनस्पति जिस शकल विच प्रगट होई वो है पशु ते पक्षी। हुण निरे प्यास नहीं भुख भी लगती है निरे पानी नाल शेर नू नहीं जवाया जा सकता मांस भी चाहिदा है निरा पानी नाल गऊ नू नहीं जवाया जा सकता घास भी चाहिदी है। प्यास भी लगती है भुख भी आवाज भी आ गई पशुआ कोल आवाज भी आ गई। लखा साल दी लंबी यात्रा तो बाद मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हैं एक पशु जिस शकल दे प्रगट होए ने इनू कहिंदे ने मनुख। इहदा मन पशु नालों ज्यादा विकसित हो गया बनस्पति नालों ज्यादा जागया है इहदियां लोड़ां भी ज्यादा ने जागया जो ज्यादा है पशु नालों इहदियां लोड़ां ज्यादा ने। पशु की समाजिक जिंदगी नहीं है पशु की राजनीतिक जिंदगी नहीं है पशु की धार्मिक जिंदगी नहीं है मनुख की है ज्यादा जागया है ज्यादा जागया इहदियां समस्यावां भी ज्यादा ने। और इंज कह दईए सारे पशु सुखी ने दुख दे केवल मनुख जी रहे क्योंकि ज्यादा जा गया इनू असलियत का थोड़ा बहुत ज्यादा पता चल गया। पर जिमें बनस्पति ते पत्थर रस्ते दे चने पशु भी रस्ते दे चने मनुख भी अजे रस्ते दे चे मनुख दा परमात्मा होना बाकी है। भई प्रापत मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी वरिया। असी सारे दे सारे पड़ाव दे चा जितने चिर तक गोबिंद नहीं हो गए रस्ते च ही हैं। गोबिंद किवें होई गए प्रभु किवें होई गए मैं अपने वक्ताओं नूं इत्थे समाप्त करना क्योंकि मैं 10 मिनट ज्यादा लै गया ते होर समय दी मैं उलंघना नहीं करनी। थोड़े नेड़े दूजे गुरुद्वारा साहब दे 118 मैं दो दिन हाजरी भरनी है 29-9-30 उदों मैं खोलण दी कोशिश करांगा। प्रकृति ने पत्थर नूं बनस्पति बनाया प्रकृति ने बनस्पति नूं पशु पक्षी बनाया प्रकृति ने पशु पक्षी नूं मनुख बनाया हुण प्रकृति मनुख नूं परमात्मा नहीं बनाएगी। मनुख स्वयं कोशिश करे अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है मनुख नूं स्वतंत्र छोड़ देता है। प्रकृति ने मनुख नूं स्वतंत्र कर देता है कर्म लई स्वतंत्र। तुसीं आखो नहीं ए वी बजे होया फिर सत्संग करन दी लोड़ ही नहीं कथा कीर्तन दी लोड़ ही नहीं स्वतंत्र है। भुखा मर जाएगा शेर कास नहीं खाएगा भुखी मर जाएगी गऊ मांस नहीं खाएगी। उदा ते खाना पीना भी बजे होया है मनुख दा खाना पीना बजे होया ने हजारां तरह दे पकवानां दा जन्मदाता है। सिर्फ भारत विच हजारां तरह दे खाने ने बंगालियां दा खाना होर गुजरातियां दा होर तमिलनाडु महाराष्ट्र लोगां दा खाना होर पंजाबियां दा होर कश्मीरियां दा होर चाइनीज फूड अलग है यूरोपियन अलग है। दुनिया विच हजारां तरह दे खाने क्यों मनुख स्वतंत्र है हजारां तरह पीण दे साधन पहनण दे साधन पशु स्वतंत्र नहीं है। हजारां साल पहले भी घोंसले चलेंदे सन पंछी अज भी उत्थे हजारां साल पहले भी घुरनियां चलेंदे सन शेर अज भी उत्थे हजारां साल पहले भी शिकार करके कच्चा मांस खांदे सन अज भी उत्थे हजारां साल पहले भी घास खांदी सी गऊ अज भी उत्थे। कोई उन्नति नहीं हुई रुकिया होया जीवन उहनूं कहिंदे ने बनस्पति पशु। विकासशील जिंदगी उहनूं कहिंदे ने मनुख। ये विकास करके परमात्मा किवें बने ये बाकी दो दिन च मैं यतन करांगा मेरे कोल गल पूरी हो जाए। इन्हां 11 दिनां च नहीं हुई मैनूं खुद अफसोस हो जांदा गल विचे रह जांदी है। बाकी उन्हां दो दिनां च मैं थोड़े सामने पूरी करांगा समय दी उलंघना नहीं करनी क्योंकि प्रबंधक साहिबान ने सारा प्रॉम चार्ट बनाया हुंदा। दूजा इत्थे आण लग्या प्रबंधक साहिबान ने मैनूं इंडिया विच फोन कीता सी मैं कहा मैनूं खुशी होवेगी। उस भाई मक्खण शाह लबाणा गुरु हमेशा भोरे च ही आउंदा कोई गुरु का सिख ही प्रगट करता है गुरु नूं ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰੇ ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਭੋਰੇ ਚ ਸੀ, ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਇਸ ਨਿਵਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ, ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਹੈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਪਰਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਦਿਨ 29 ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਲੌਂਗ ਹੋਏ ਆਈਲੈਂਡ ਪਲੇਨ ਵੇਵ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਫਤਿਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ।
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ